0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche. Studio FM. Studio time.
2: It's 6 PM.
3: न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुतु नगर पालिका 5 सोलुकुम्बू।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने थे 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने थे 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: तथा ध्वनामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. City FM. In studio time.
2: Sit in. We have to go bus with it.
0: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका पांच सौ

0: बावीस सर्वाधिक बिक्री हुई। अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चुकिया।
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रवृि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफ रोड का लगी उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भैर
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लगी अति उपयोगी।
1: हमारा सेवा
2: ओखलढुंगा खोटांग को दिक्कल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुके मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाने का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद करना एक सेट हेलमेट और सर्विस सेवा निःशुल्क दीने
1: ऑनलाइन बुकिंग करे भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
2: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस टाली सिद्धिशरण नगरपालिक एघार गुरुमारे भुजाई उखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852888002222 98482303।

जिंदगी चलते पैसा तेरा उचित पैसा जिंदगी चलते पैसा तेरा उचित पैसा जमन मचोटा छोटा मेरा घर करता पैसा को मोटा रहे।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रबंधन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकूने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आईना गुनासो सुनने अधिकार कार्यालय प्रमुख सीधे संपर्क राख् सकूने कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर सवारी साधन को इंजिन और तेजी श्रृंखला संबंधी सूचना आदरणीय सेवा ग्राही महानुभावहरू तपाईले आफ्नो सवारी साधन नया खरीद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधन को इंजिन र चेसिस को अवस्था रुजू वा अन्य कुनै कैफियत भई नभएको रुजू गरेर मात्र खरीद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। उत्तर प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगर
1: हेलो दाई नमस्कार।
2: नमस्कार भाई कता छौ?
1: म त गाउँमै छु नि दाई। एसी परीक्षा सकेर बसेको साथीभाइ सबैले काठमाडौँ गएर कलेज छानिसके कहाँ पढ्ने के पढ्ने म त अमाउमा परे दाई।
2: अमाउमा पर्ने कुरै छैन भाई। साथीभाइ चारोनी को मनसुन कलेज आएर बुझेर तिमी पढ्नु निको गरेर बुझिसके तिमी पनि भुक्क भएर आउने अब तिमी पढ्ने किनकि मनसु आज लाखौं

0: वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज में विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासी वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीपाटी संपर्क नंबर 9803623882 9803623287
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मध्य दूतकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मध्य दूतकोशी को समृद्धि मध्य दूतकोशी गणपालिका समिति के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बिहार सांस साढ़े सात बजे देखि आठ बजे समय सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज अनलाइन और सुनो एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन सकूंगे।

0: తులి పగే నమ్మకాంతి మరు మయలో మల్ల రాత్రి చెడే హేరా పింగ్ బిసోనే హేరా పింగ్ బిసోనే పాగల కంబర్ హేరన్న హరిహలమే పాగల కంబర్ హేరన్న హరిహలమే
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग झिमगे सुचोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य कार्यक्रम में माथिल्लो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो खेरा फादुङ क्षेत्र में नस्ताद काट्न गाई बस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने संपूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुने यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कृपया जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राखिदियोस्। उपभोक्ता समिति बाट बचन र बचाओ यौचन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौचन्य हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन्। हिंसा समिति असन्तोष साथीलाई परिचित नदिँदा जोखिमबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौ। बाल बालिकाको चालचलन बानी व्यवहार अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यस्तो पाइने उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौ। बाल बालिकासँग नियमित सम्वाद पनि गरौ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहितमा

কার্যক্রম দিতে গিয়ে মানে সেই দশরন্তী মিশ্রাম রহেকথিও দশরন্তী মিশ্রাম লাগে পোখরি পার করি রে কার্যক্রম গীতে গীত বৈশাখ আলু দেখি নিতাইগুড়ি ডু সিট নামে গোপজনা থালি সকি কাছে রাওনা চোখ মেশ্বর 97 64 নাম 50 সৌম্য সত্তরীপুর লাইন ভয় রসে কার্যক্রম সহযোগিতা জনাউনি হা ভা সাহায্য পক্ষে ধেরে জানা সাথী দুই সময় আপনি কাম ব্যস্ততা হলা কতিপয় সাথী মিলাপাত উকালি ওরানি भैजांग चौतारी गण जानूला कास्ता गण जंगल तीर जानूला कतिपय साथी समय में उठाला गई स्कूल कलेज तीर होलाशिखा में व्यस्त होगा तपाई व्यस्त अवस्था में रही तपनी कार्यक्रम में अंतिम समय सुनेर तपाई सकूने कार्यक्रम में राखी गीत मार्फत तपाईपुर मनोरंजन लीन सकूने भाँचु मतिपयजना साथी समय में पक्की कार्यक्रम सुनेर मजा मनोरंजन लिइरहनु भएको छ होला कोही साथी हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा भन्दै थियो उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भएको छ पुनः प्रयास गर्नुहोला 97 64 54 74 को लाइन भएर चाहिँ कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँको फोन आयो भने अवश्य पनि तपाईँको फोन लिएर तपाईँको व्यवसायमा सफल गीत हामी अवश्य पनि सुन्नेछौ भन्दै चाहिँ एकदमै मिठो गीतहरू हामी जानेछौ गीतको बोल रहेको छ एकदमै मिठो गीतको बोल रहेको छ जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म भन्ने गीतको बोल रहेको छ नाइमा भन्नु ल बबीबाट लिएको यो मिठो गीतमा आवाज रहेको छ दीपक लिम्बुको आवाजमा रहेको यो मिठो गीत हामी एकैछिन सुनौ गीतको साथ फेरि आउँछौं

0: टोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: सूचना शिक्षा र स्वस्थ मनोरंजन का लागि सुनवा छन् सुन्दै गर्नु होला नमस्कार नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन सूचना हुंडा का विशेषता
1: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
0: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
0: टिकाऊ र भद्र
1: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
0: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
1: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी उखलढुंगा खोटांग को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
0: जिनसुके मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विस सेवा
1: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
0: अनलाइन बुकिंग करे भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
1: उखलढुंगा को लगी आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भिजाई
0: संपर्क नंबर 0375902222 9852888002222 98482030

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Sunset. City of Fame. The studio time.
2: It's 6 p.m. Saturday, 12 o'clock.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुकुन नगर पालिका पास सोनू कुंडू
2: चार अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

लसो जोजियाले नानाङलाई दगु तिनी यन चुरङ जम्मुनि चिबमुला तुरी लानन आजबा तामगादिसे प्लिङमुला चु जम्मुलिङरी यांसे सेमरी सन्दुष्ट लसी चिखम्बा आरे तिनी चुरङमा जम्मुलिङरी ज्याबल लसी चिबारी यंगा सान्दी यंगबरी ज्याबल लसी चोबारी चेमला सन्दोकला लागिरी परमेश्वर वचन यांसे यंगा लोपमुना हे बन्दा नाचा यंग संयुगे बोर्ग

आदरणीय श्रोता रो मागदे प्रभु येशूला पवित्र मिन्दे जयमसी अनि फ्याफुला यांगजे यर्बला खेतंगे परमेश्वर ल वचन क्यामजे प्रभु येशू शिव क्यामजे बौरी रेनबा बिवा बारे दे संशियो बलमुला ठेक्यामजे यांगजे लानन आशीष यलमुला तिमी यांग छार जीवन तोनबा बिवा बिचेरी संशेलमुला प्रिय रो मागदे रंगनीला चिठी पत्र एसएमएस कदे प्रतिक्रिया कदे नंजे प्राप्त लड़ीबन मुला अनि रंगनीला प्रार्थना लबिसेरी प्रार्थना लड़ीबन मुला प्रिय रो मागदे रंगनीजे जो मार्गदर्शन खेतंग रंगनीला रंगलान खेतंग हिन बमुला बिसी नंदा पत्र कोई हाबदा हमले शिवो बिसी अनुरोध लबमुला प्रिय श्रोता पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल युहन्ना तीन अध्याय छ पद हिंजे आठ पद सम्म मनन लसेलमुला नाई प्रतिमुला रंगनीजी संशिगो येशुजी सुंगजी हिन्मानो नाई ये पांगमुला कोई छार दसी जन्म आदिन विषम थेजे परमेश्वर राज्य तंगमाहम शरीर क्यामजे नबला शरीर हिन्ना अनि पवित्र आत्मा क्यामजे नबला आत्मा हिन्ना नै यत छार तसी नदब मुला पंक्षी पाङमा अचम्मा थङ्गम्गो लाबहास हाबा लाबहास यर्बा होसन यर्बा मुला ए लाबल आवाज सानबा हम्ब मुला तर थे हानङ क्यामजे हाबा अनि हास यर्बा थे आसेब मुला आत्मा क्यामजे नबला हरेक मि मला बेसी येशू प्रभुजे रंग वचन ली सुझे जो घटना का यांगजे विचार लसी सीज विषम प्रिय रो मागदे यहूदी समाज रे निकोदेमस मिन लबला कोर्की प्रसिद्ध मी मोबला यहूदी समाज ला सदस्य नो हिन्न मोबला थेजे येशूजे लस्योबला आश्चर्य रखे अनि येशूजे दोनमला उपदेश अनि यहूदी व्यवस्था प्रतिशी सीमाले येशु ख्रिस्त परमेश्वरला चा हिन्बा विवाद था यांगजी अनि थे समाज क्यामजे लोंगसी न त समाज खलाला कि समाज आज भो पाङला कि पाङसी थे लोंगमा मोबला थे दैरी थे मुनङ लालटिन नसी येशु जा चु प्रश्न लबरी हाजी अनि येशुजे चु जवाब निको दिमस्त दुन्सी बमुला अनि थेजे थे बाद आगो बमुला ए यहुदी कदेला एतै माछ सदस्य तसिनो ज्ञान देन बुद्धिजे धर्मशास्त्र जे लिङ्गमला व्यक्ति तसिनो चु बाद आगोनी विषम स्यान्दोजे हरणले कोसे बिव प्रश्न येशुजे लास्योजे थेजे उत्तरी पाङ मुला आमाला गर्व ग्याम्जे नसिनु फेरि थिए खेपतोसी हरङले आमलाको क्याम्जे नभहाम्से येशुजे चुरी थेला आत्माला बाद सुङमला मुला तर थेजे शरीरला ताम पाङजे तिनी संसारी लानन जवान व्यक्तिका देमुला तर थिङीका देला शिक्षा जे लसे शरीर तामजे नाङमामुला अनि वास्तवरी येशु जे थेला आत्मामा चिन्ता लसिबमुला वास्तवरी एदेन छार दसी हृदय परिवर्तन तब अहमले विषम न्याङ रङजे रङ्गन सुधार लबा अहम्बमुला न्याङ ल छिमेक न्याङ ल समाज न्याङ ल टिम न्याङ ल जिल्ला न्याङ ल देश हरणले परिवर्तन त प्रिय रो मागदे तिमी एदेन हृदयलाई परिवर्तन तब त खाँचो मला येशु ख्रिस्टी छार तसी जन्मैथी बद लानन खाँचो मला एदेन नाई वास्तवरी येशु त जब सेमनाङजे म सेब मुला विश्वास लब मुला अनि ग्रहण लब मुला विषम थे याङला हृदय चुनहाब मुला अनि थेला उपस्थित जे न्याङला हृदय परिवर्तन
tabamula. Yang kharap tabala dekti jaba taba hamamula. Bab raksi je nang balami thela chutkara taba hamamula. Achyama sabta je pangbami shuddha taba ani paribartan taba hamamula. Namrata boli dayalu ani thela jibandi taba hamamula. Ani arko bad rangni da tini rangni la agadi nai cho bad angje nyangji bichar lai tasi bisham प्रभु येशूजी न्यांगदा मायाला शिवमला अनि अर्को बात रंगनी दतुरी मोमला येशूजे होते सुंगिन महेंजे निकु देमास मिन लबमी थ्याम क्यामजे यारजी खास गरी थे येशू द ग्रहण लबरी पंक्षी हावल मोबला थेला सेमला ताम रिदेल ताम येशूजे कोसियोजी अनि अर्को फ्लारी थेजे एरंगले सुनमला जो छंगमान चंदो हालजे लाभा हम्मा अनि येशु ख्रिस्ट बाहेक चंदो हालजेनो लाभा अहम्बमला परमेश्वर लमाया न्यंग बिजे एरंगले प्रकृता जिकी थेजे रंगला कोरकीजे मोबला चानो जो संसारी पुई हाजी ताकि चक्यामजे न्यंग सोबा हम गए परमेश्वर लमाया तेरे मुला की न्यांजे माया लावला आहिन की ठेजे न्यांग दा माया लशियोबला हिन्ना अनि न्यांगला पापला उदार छुटकारा लाबदा रंगलचा पुहासियोजी योहन्ना चारा देला नौ हिंजे दस पद्रे एरोंले प्रिबलमला तरे अनंत जीवन जो हिन्ना की ठेंगी कदेजे एक ओर की जे सत्य परमेश्वर हिन्ना अनि रंग जे पुहावला येशुदा मसे गए प्रिय रोमा गदे प्रभु येशुला माया कति आचम मलमुला थेजे यांगदा रंगला जीवन अर्पण लसियोजी यदि यांगजे यांगला जीवन परिवर्तन लसी थेद विश्वास लजी विषम थेंगदा आशीष दोनसेलमुला तिमीले केतंगे समय जेगादा विस्तारनु बेदलाजे प्रिय रोमागदे तीन लपचंदे परमेश्वर जे रंगनीदा प्रशस्त आशीष तुन शिव गए।

0: रोगादे रंगसे दन्दे बर्खा रंग युवन मोला मार्ग दर्शन गेदाङ रोगादे तिनी लु गेदाङ रंगनीदा खरङमा नम्जी तुदे चु गेदाङ यान्छी रंगनीदा तिकै खुल्दुले ताबा मुसम रंगनीला पत्रला नुन्छी आस लसिची बमुला रंगनीला सल्ला कुई खाला कुई खासुला विवाह रंगनीदा आनन्द जेन बमुला तुदे रंगनीला प्रार्थना लदोब विषय दुगो मुला विषम रंगनीसी कुई खासुगु विवाह मन्ना जेन बमुला रंगनीदा नन्ना चु गेदाङला ठेगाना चुरङ बमुला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नंबर 8975 ईपीसी 2561 काठमांडू नेपाल ईमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागेरे 98473 35679 98473 35679
0: लसो रोदुगु तिनी चुगेदाङ यासेङनी फेसी निबन मला दोषी खबर सुनुन दुरी रंगनी लंगोनसांगले रूप तबरी खलाब विवा बाचा लवन नहीं चुगम फेसिनेला लसो फ्याफुला

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुन्डा नगरपालिका ५ सोलु कुम्बु

0: लो के बोला मिला
1: चेनुस नदाई प्रवीण बनने उटा कॉलेज को किरदा सा जट्टी हीरे पर मेरे पची लाये कुलाये घोड़ते हो मारे तो कुत्ती छोटी बनी जागी माला तो मन भर देना बनी रहा उसलिए ने मेरे फोटो वीडियो और कुछ तो बनाया रहा ब्लैकमेल करना खोज दी सदाई यदि उसले बने को माने न बने तो सब पे फोटो और उसको साथ यहाँ पढ़े दिन से बनी रहा है कुछ यदि इस तो बाय बने तो वो कॉलेज जाने तो के मार दिन से
0: ऐसे नोट ऐड आता मस्त होगा येरा रामिला अब हमले प्रोहरी चौकी गया प्रोहरी को सलाह बोलने दिन जाना पड़ता तीमी टेंशन ना लेता तेजले तीमला केबनी करना सर देना बोलो तीमी इस तो करना तिमी त्यो केटालाई केही कुरामा भुलाइराख हामीलाई यस्तो बेला सहयोग गर्ने भनेको प्रहरी मात्रै हो म एकछिनमा आउँछु तिमी रेडी हुँदै गर ल है

0: कहाँ जाना को तिमीहरु अनि रमिला के भयो किन रोकि तिमी के भयो
1: मम्मी सबै बहिनीलाई लगेर प्रिन्सेसन जानु
0: अनि त
1: मलाई कसैसँग माफी माग्न जानु छ

0: Saiu rádio Sono FM
1: Sono FM 101.2 MHz Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan
2: Sono FM Studio Time
3: It's 8 p.m. रात को 8 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुपुन नगर पालिका 5 सोलू कुंडू
4: यह बिहान 8 बजे प्रसारण भएको कृषि विशेष बदलिने नेपाल को पुनः प्रसारण

0: सुनो मेरे खतरा पैकिंग कर दू तो सामजी को मिसेज लाई कैंसर उपचार कराने इंडिया संगे लिएर जाने पड़ने
1: हो रही सुनो तो अब कैंसर को उपचार सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएंट ट्यूबिंग 60 काउंस र हाइपर आर्क लगायत का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में बने ट्यूमर फोक्सो को कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा टाउको संबंधी कैंसर पेट तथा कलेजो संबंधी कैंसर पाठेघर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ। कैंसर भएको ठाउँको पहचान करी रेडिएशन को माध्यम पूर्ण रूप में निको होने करी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पताल की सेवा शुल्क में उपचार हुनुका साथ ही नेपाल सरकार प्रदान गरिने कैंसर पीड़ित का लागि 1,00,000 सम्म को छूट को व्यवस्था पनि छ।
0: यस्तो सुविधा रहेछ। म अब कैंसर उपचार गराउन सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट में नहीं लिएर जान्छु।
2: फोन 0956-4493-5555।
3: आँखा नाक कान र घाटी उपचार का लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर को प्रविधि युक्त दृष्टि आँखा अस्पताल बीतामोड वीरगंज र काठमाडौं कलम्पी का साथ ही शाखाहरू चाबहिल बानीसुर जमल र ओम अस्पताल में
4: सेवाहरू बिना इंजेक्शन मोतीबिंदु को अपरेशन अपरेशन पछि चश्मा लगाउनु नपर्ने प्रीमियम लेन्स बाल बालिका को आंखा को पावर बन्न रोक्ने मायोपिया कंट्रोल लेन्स ड्राई आंखा को थेरापी आंखा को पर्दा सात जलबिंदु को उपचार नाक कान घाटी को उपचार सामाजिक सुरक्षा कोष को स्वास्थ्य बीमा सुविधा वेबसाइट drishtieye.org फोन नंबर 01-5224-3552-5224-3553
5: जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूका लागि खुशीको खबर शैक्षिक सत्र 2026-27 का लागि नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित जापानकै अग्रणी शैक्षिक संस्था एभरेस्ट इन्टरनेशनल स्कूल जापानमा कक्षा 11 म्यानेजमेन्ट र साइन्स विषयका कक्षाहरूमा नयाँ भर्ना खुलेको छ। अनुभवी शिक्षकहरू आधुनिक शिक्षण वातावरण नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा एसईई र एनईई बोर्ड परीक्षाको उत्कृष्ट तयारी छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका साथै नेपाली भाषा संस्कार र पहिचान सँगै अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको अवसर सीट सीमित छ। आजै सम्पर्क गरी आफ्ना बाल बालिकाको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्नुहोस्। सम्पर्क 03-5335-7379 सेन्ट्रल टोकियो जापान एभरेस्ट इन्टरनेशनल स्कूल जापान उज्जवल भविष्यको बलियो आधार।
6: अब इंटरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित इंट्रोड्यूसिंग वाईफाई 6 विथ सुविसु सुरक्षा
7: वाईफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
6: साथै सुविसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
7: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ।
6: सुविसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
7: सुनाय 42-33-888 अन्त 12-33-888

0: Kid. City FM, the studio time.
1: 10 p.m. रात को 10 बजे.
0: अंचे कुसाहना, न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस, सोलु दुर्गु नगर पालिका 500